पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तै तारी है। देखे पिता अपना अंदर कच्ची पत्ती सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। इसके जी प्राण है पे साहे मन में सारी है, आपन हटती अपना आपे ही आसवा।

निर्मल नाम जप हौ सद गुर मुखे, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ ते आगह, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यो भावै त्यो राखहु हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ ते आगह, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यो पावै त्यो राखहु हर जियो,

0: जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महता, तेरे अपना आप जर सर्ब कला परपुर दी सहदत कता, नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता सलो।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोहदाई दया खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां।

कर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन कर्तबा। जिया इंद्र जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे वस तेरा घर पला। तेरे घर आनंद वदाई तुद घर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। सर्ब कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुद आगे।

चितना पतंग की कुसुम सुवास जैसे त्रिपत ना मधप को उड़त आकाश आस घटे ना बेहंग की घटा कन घोर घटा कन घोर मोर चात्र हृदय उलास नाद बाद सुन रत घटे ना कुरंग की तैसे प्रिय प्रेम रस रसक रसाल संत कटत न तृष्णा कटत न तृष्णा।

सच्चा तुद तख्त सिर साहा पात साहू नहचल चौर छत पौड़ी वड्डी वड्डा।

0: सर्व कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुदया गै बिनवता।
1: सलोक पवन गुरु पानी पिता, माता करत महत दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत।

0: सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला, तेरा कर आनंद। वधाई तुद कर मान महता, तेज अपनाया पजर सर्ब कला, परपुर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुदया गै बिन वता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरियां।

गए मशक्त काल, नानक ते मुख उजले केते छुटे नाल, जिने नाम ते आया गए मशक्कत।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दोष सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब बैरन को आज संघरिय।

पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लेहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह वध कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकर्ख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूप। आंडज जीरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमंट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दोष्ट जिति उठ वत उत पाता, सकल मलेश करो राण काता। जी अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे

सहाय दुष्ट दुख तिल हो बचाई। सवैय पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सवना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित

आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखानो सिखी दान के सुदान रहत दान। बाबेक दान विसाह दान प्रोसा दान धन्ना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगी अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे पाण नेटियां दी ओट तन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज।

अपराधी गुनहगार, हाँ बेमुख मंदा, चोर जार जुआर, हाँ पार कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घाती अकिरत कहण,

महला चौथा। मन मुख माया मोहे व्यापे, दूजे पाए मनुआ थिर नाहे। आन दिन जालत रह है दिन राती, हौमे खपह खपाहे।

प्रभ साचा जे गुर चरणी चित लाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया से बिचखण जंत जिनी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक भए पुनीत हर तीर्थ नाया।

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियों गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो

जन्म मरण दुख हो सिफत खसमदीन और अरसह कुरसह तू डिठे सचे पात सह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सब नांद सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दूसरा दुदाई दा खेले सब जग चंगियाइयां बुरियाइयां वच धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का।

सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्म हस्त का रख्या परमेश्वर आत्म रख्या गुरदयाल पै दुख बिना सन है भगत बछल सर्व रख्या गुरदयाल पै दुख बिना सन है भगत बछल अनाथ नाथ

दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा कर्म हदूर कर्मी आपो अपनी के

भेद विचार। किते नच्चे मंगते गड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार। गावे राजे रानिया बोले आल पताल, लटकिया के मुंडड़े लटकिया के हार। जित तन पाई है नानका सेतन हो वैशा, ज्ञान ना गली ढूंढिया कथना करड़ा सा। कर्म मिले तो पाई है

0: पढ़ पढ़ बेड़ी पाइये पढ़ पढ़ गड़िये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल और हों मैं चखना चौक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तक कड़िया बो तीर्थ पव्या ते तो लव्या बो पेक किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे ऐन कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पिताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई मूर्खियां दे पत गवाई बिन नामे किस तो ये ना पाई
0: रहे बिबानी
1: मड़ी मसानी अंधना जाने फिर पचानी सतगुरु भेटे सो पाए हर का ना मन मसाए नानक नदर करे सो पाए आसे अंधे से तीन केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी।

0: ताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गुए दाल जे कहोए ता गुए रुति हुरत होए नानक पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पै विच खुंभ चढ़ाइए शर्म पाहो तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
1: लब पाप तो राजा बहता कूड़ होआ सिकदा कामनेब सद पुछिए।

करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोख द्वार, जती सदा वे जुगत ना जाने छड़ बहे घर बार, सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आखे, पत परवाना पीछे पाई है, ता नानक तो लिया जापे महला पहला।

0: शब्दं सुर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्द में एक शब्द जे को जाने पयो, नानक ता का दास है। सोई निरंजन देव महला दूजा।
1: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव।

सकल सृष्ट लग बेतरों तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेसर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों।

0: को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कहेत पाए रहो मिल राम स्यो।
1: अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे तरी। जग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धित ते मत चूके रे मन भेद विभेद न

बिनौ करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहे आप भरपूर। जन नानक गावै देख हदूर, बिनौ करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहे आप भरपूर।

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय।